मत कद गीत खोल खड खड बोरु देने वा सो मिलन गीते गायन कराने जब प्यार की से होता है चित्रपट लता मंगेशकर।

मिलन गीते मधुमती चित्रपटे गायनेकराने मोहम्मद राफी तामत में जनप्रिय उन सुदुकालु चित्रपटे वाय जयंती माला समग्र दिलीप कुमार तमा में चित्रपटे रंग पैवे इति अभी तोरा गत्ता ओबे इल्लीमानु मे गीत बहुत दिन के लिए तिबुना मधुमती चित्रपटे गीत गणना वक में ए अतरी मातोरागत नम वेडिम दिन के लिए तिबु गीते अभी धन सामान देमु

मिलन गीते जब प्यार किसी से होता है चित्रपट दशम से हटे एक गीत में चित्रपट प्रदर्शन उन्हें मोहम्मद राफी समग लता मंगेशकर तमा में गीते गायने कराने सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम 1906 जब प्यार किसे होता है उन मोहम्मद राफी मीट लता मंगेशकर

गीते गायन के लिए महेंद्र कपूर हमराज चित्रपटे यदास नाम से हेट हते वर्षे तमय चित्रपटे प्रदर्शन हुने मिलन गीते लता मंगेशकर समग किशोर कुमार तम गायने कराने संगीत सपेवा एस डी बर्मन यदास नाम से हेट नामे आराधना चित्रपटे राजेश खन्ना समग शर्मिला ठाकुर तम मे चित्रपटे रंग पाने सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम द किशोर कुमार उन लता मंगेशकर फ्रॉम द फिल्म आराधना द लीप नोन से नून नोन उन सेक्सिक राजेश खन्ना और शर्मिला ठाकुर हंट दीसन फिल्म की स्पील्ड म्यूजिक फ्रॉम एस डी बर्मन

0: मिलन गीते मोहम्मद राफी गाने कराने चित्रपट दोस्त थी सौंद एक गीते तो जो नेक्स्ट लीड फ्रॉम मोहम्मद राफी
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर

1956 චෝරි චෝරි චිත්‍රපටයේ මන්නා ඩේස් සමග ලතා මංගෙස්කර් මේ ගීතය ගායනා කළා. 1956 ෆුම්සිං for the film Chori Chori, Manna Day on Lata Mangeshkar hata disa lead ge sungana. Milan geete Talat Mahmud gen Shankar Jayakishan tamai me chitrapateta sangeete rasavat kale. Pachita chitrapate 1953 tama pradarshane une. तुझे अपने पास बुलात हाय के न गीते तमा में थलात मोहम्मद में चित्रपट एक गाने के लिए नेक्स्ट लीड फ्रॉम द फिल्म पटीटा 1900 ड्राउन पुम्सिक लीप दिस फिल्म इन इंडियन और थलात महमूद हट लीड के सुंगन

दास नमस्य अनुनामी प्रदर्शनी उन ताल चित्रपटेट में गीते ऐतुलत्तेनो गायने करने अलका याक्निक समग उदय नारायण में चित्रपटे रंगपानो अक्षय खन्ना समग ऐश्वर्या राय संगीत सपयाने ए आर रहमान पदराजने आनंद बाक्षिगे इस फिल्म लीप 1999 दी हाइसन ताल अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय हट हाउप्रोल स्पील This lead wird gesungen von Alka Yagnik und Uday Narayan, Musik von A.R. Rahman, Lyrics von Anand Bakshi. Tal se tal mila.

इंद्रसनम से हैटे वसरे प्रदर्शनी उनु दिल अपना और प्रीत पराय चित्रपटे रंगपानवा मीना कुमारी राजकुमार ओम प्रकाश समग किशोर साहू संगीते सपयाने शंकर जाय किशन में गीते गायना करनवा लता मंगेशकर दिल अपना और प्रीत पराय लिफ्ट 1966 हाउप्ट्रोलग स्पेल्ट मीना कुमारी उन राजकुमार म्यूजिक फॉन शंकर जायकिशन उन दिस लीड फॉन लता मंगेशकर।